अठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जिन्हां नूं बाला प्रीतम करके सिख संगतां याद कर दियां हन, जिन्हां दी याद विच कई जगह गुरुद्वारे बने हन। दिल्ली दे विच गुरुद्वारा बंगला साहब, जिस जगह हजारां संगतां रोजाना जाके अपना सीस चुकांदियां हन और नाल मथा टेकदियां होईयां, उन्हां दे मुंह तों अपने आप ही निकलदा है, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तो आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दा जीवन आपां सारे रल के विचार करिए। जीवन तो पहला भाई गुरदास जी की उचारी हुई पौड़ी, हर कृष्ण पयो अष्टम बलवीरा, आओ आपां सारे रल के इस शब्द की विचार करिए।

गुरु बलवीरा बल वाले जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे ने हर कृष्ण पायो गुरु हर कृष्ण साहब अठवें गुरु बड़े बल वाले सन जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया बाल रूप तरियो स्वांग रचाए बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह दे कौतुक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता बाल रूप तरियो स्वांग रचाए तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे जीवन बारे

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालों नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरु गद्दी अपने

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैं

पढ़ लिये और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जियो कोई रचनावां जी ना रवे आओ एक बार इन्हां तुकां नूं सारे पढ़ लिये।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का

प्राण आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तुहनों पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख है कीता अपना जीवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत।

जाने हैं, सौ नेड़ धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकियां देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जां सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जलथल महियल भर पुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुक्त सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम है।

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेर जसे तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तनक मो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूड चितलाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो या की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो या की एक बार चौपई को कहे। राम कलीम हलाती जानंद को अंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्दो ता गावहो हरि के रा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे घरता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया ये विडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कलां जित घर धारियां पंच दूत

और किसे स्थान उते जुल्म दिया हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास दा खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों

शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंडा लाया जाए, लुकाई ले सब कुछ वार के करों बेकर होके जंगलों दा वासी होके रहना, फिर सिदक ना हारना। कमाल दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल होर।

हे परमात्मा मैं तेरे दर का भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोविंद कृतमी फाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहिगुरु परमात्मा